0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: रेडियो सारंग 107.8 FM।